0: चे
1: त्रिसत्गुरु स्वामी माधवानंची गुरुदेव विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंची गुरुदेव की जय श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय

0: बोले श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय।
1: गुरुदेवा की जय। श्री मीराबाई जी की जय।

जय श्री सतगुरु देवा की जय देवपुरी जी महादेवा की जय सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय भारत माता की जय।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यदायन्ति योगिना कां दं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।

जय श्री श्री देव पुरी महादेव हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ब्लेसेड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर एंड सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड

0: हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती है, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सुदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: people?
1: Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In.
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens.

0: calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of $51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Kedona.
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor. Catch me?
2: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब कुछ, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में, मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे। ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान वो

0: करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी झोली सुख से भर देगा ओ, सब भूल समा कर देगा।
1: ऑल ऑफ यू, यू ए वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन कॉमेंट्री, ए रियल पिक्चर ऑफ the tragedy which happened in Nepal by respected DG Saab Kanhaiyalalji Bairwa. Through his voice, his words, what he heard, what he saw in the pictures, in the televisions, medias, my dear brothers and sisters, definitely you also have watched this in the televisions, in the medias. He explained what happened and how quickly the government of India took the action. And the whole army, doctors, food, etc. got, because Nepal is just a neighbor country closer to us, is in Himalaya, and so according to him, still there is some people are still needy, suffering, and we shall do something. We pray that it should not happen to any creature, any human, and any forest, rivers. Brahma Rishi

0: Shiva quel clash.
1: Quindi che blangri, che da gri gri grand. Da do da di camerettare che ide. एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो साथ है ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
0: ओ सहस्रार चक्र

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अलकपुरीजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांतिः शांतिः शांतिः ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhaya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की

0: बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
1: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स ऑफ विच आवर डियर महामंडलेश्वर जी इज टेलिंग फॉर विश्व गुरु जी हैज अ लॉन्ग ट्रांसलेशन। सो ही सेज दैट रेवरेंड एंड रिस्पेक्टेड विश्व गुरु जी Paramahansa Swami Maheshwaranand ji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे.
1: And he thinks that this tapasya, this kind of sadhana will bring millions of people in the future.
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है.
1: In Indian tradition, there is a great importance of guru.
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं.
1: Shankaracharya ji says in his Bhashya, in his commentaries.
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है.
1: If somebody is greater than God, then this is guru.
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है.
1: Nobody saw God.
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं.
1: And guru is in front of us.
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं.
1: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
1: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
1: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
1: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता.
1: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं. एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है.
1: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है आजादी मिली है. ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है.
1: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है. इसी समय का हमें सदुपयोग करना है.
1: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति. जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा.
1: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं. जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
1: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर ईश्वर परमात्मा पर है वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
1: सो इन वेदस इज सेड दैट एज मच एज वी बिलीव इन गॉड द सेम अमाउंट ऑफ बिलीव वी शुड हैव टू आवर गुरु.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज स्वामी देवपुरी जी महाराज दीप नारायण प्रभु जी महाराज श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
1: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
1: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
1: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
0: Hari Om Tassat, Hari Om Tassat.
1: Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jai. Swami Atmananji Maharaj ki jai.
0: Swami Gyaneshwar Guruji Maharaj ki jai.
1: This was, I think, it was like a introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here, in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit. 1-2 shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from its, it can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridah Kasya Svidhanam Kurvaneve Karmani Jiji Vishechatam Samaha Evam Tvai Nanyate Tosti Na Karma Lipyate Nare Asurya Namate Loka Andhena Tamasavritaha Tanste Pretyabhigachanti Yeke Chatmahano Janaha Ane jade kamana sojavio naina deva apnuvan purva marshat tadhavato anyena tieti tishta tasmina po matarishva dadati tade jati tane jati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya se bahyataha yastu sarvani bhutani atmanyavanu pasyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate Yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijadha vijatanataha tatrakomoha kaha shokaikatvamanu pasyataha. So we reached till the 5th shloka, and I will just tell the short of the 6th and 7th shloka. Yastu sarvani bhutani atmanyevanu pasyati. So Ishavasya Upanishad, first three mantras, it gave us the moral and ethical principles. Then it started to describe the God, Atma, or divine energy. So the person who sees all beings in itself, and he sees self in all beings, he cannot hate, because just by knowing that we are all one, that we cannot hate. So you see, this sentence you can find in almost every coaching or every self-help book, and this is like tens of thousands of years old wisdom. If you realize, the problem is in realization. Can we realize that? Yasmin sarvani bhutani. And when that person realizes oneself, what sorrow can touch it? This is that what our Acharyaji was telling about. This is the realization of human life, why we came on this planet. We have two things. We have the option of doing. We have a free will to do. And we have

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लासनी माधवी श्रीमद्भागवताख्यधाम बसति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्यायलसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका।

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatm mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain.
1: This is called dhirti,
0: shama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, Veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोज दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind, isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे. उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So you're the first class of the spirituality is done in these 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: he's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना.
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम is the book which tells us how to stop ourselves.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: So नियम is this first line that when your thinking stops, when your
0: नियम means कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yasana.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: So
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai aur isi prakar se pranayama se aapke andar paan

0: पांच ईयर है वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की.
1: So like the asanas purify the body, make it clean the same way the pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है सॉल्ट एंड स्वीट. समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार is to withdraw oneself from outside and make oneself inside.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: Asan pranayam ke baad pratyahar hona chahiye, lekin aaj ke yogi jo hai vyapar shuru kar dete.
1: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: Ye mera toothpaste hai, ye mera brush hai, ye meri vaseline hai, ye mere skin cream my.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: Ye mera chamanprash hai, ye mera glucose hai, ye mera wo hai. To pratyahar jahan short एंड स्वीट होना चाहिए था वहां पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: सो
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: सो इंस्टेड ऑफ प्रत्याहार विच मीन्स कमिंग इनसाइड इज व्यापार विच मीन्स एक्सपांड. सो दिस इज नॉट गुड फॉर योगा.
0: अच्छा वो हमारा चेला है, वो इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज about its our own capacity, our own capability and so on.
0: Abhi aap dekh lijiye dharana kisko bolte hain. Ye mera sangeet wala hai. Dharana kisko bolte hain? Ye mera sangeet wala. Oh bhai,
1: so you look
0: sanyas
1: what
0: lega?
1: Means dharana
0: nahi lega. No dharana.
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the dolak person if he wants to keep sannyasa. So he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me you are a great person. You cleaned and purified, then you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, no no no no no.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग, 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना?

0: श्रीमाधव नंदजी सदगुरुदेव
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।
0: महामंडलेश्वर श्री सम्वेतपुरी जी महाराज की जय।
2: शिव शिव शंभु शंकर हर हर महादेव।

देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

0: हरि ओम गुड वेचर आयो देती नो नॉइस
1: आओ देखी जानो हलुक
0: मैनी भजन्स नाइस भजन्स
1: मनोहर क्रासनी हिस्की भजनों
0: वेरी गुड

अलख पुरी स महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

श्री श्री देव पुरीसा महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।